प्रणव हर त्याव है हर त्याव है तुदी से जन जुग मैं सुखवासी से मुक्त पह जन हर त्याया जी तें तूटी जम की फासी।

सुखी। एक एक की पीर पछाने, कड़ कड़ की पड़ पड़ की जाने। जब युद्ध करह करा करतार, प्रजा तरत तब देहे अपारम।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पहर।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कैन गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दे आवे ताए सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहिया दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख तलाई तेग बाही देख के अमृत कीता तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े तन आरिया नाल चरवाए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी सिदक के सां सुवासा संग निभाया तिना समूह शहीदा दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पन्या तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रथमै सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छया रियायत देग तेग फतेह मृत की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी।

अच्छे आ रहा है। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी।

सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद्यागर।

नमः सतगुराय नमः श्री गुरुदेवाय नमः अष्टपदी सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो काल कलेश तन माहे मिटावो सिमराओ जास विश्वंबर एक है नाम जपत अगणत अनेक है वेद पुराण सिमरेत सुधाखियर किन्ने राम नाम काखियर किनका एक जिस जीव सावे ताकि महिमा गने न आवे कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उदारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै

इन हर हर गुणगाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुन दर्द दर्द दुख लत्था नाम की महिमा संतृत बसाए संत प्रताप तुरत सबनसाए संत का संगमट भागी पाइया संत की सेवा नाम ते आइया नाम तुल कशबर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन को ए सलोक बहु शास्त्र बहु से मृति पेखे सरबट डोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान कड़ शास्त्र से मृत वखयान योग अभ्यास कर

अनहार स्वामी सगल घटा के अंतर जामी अपने गत में जानो आपे आपन संग आप रवराते तुमरी उस तुमते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जब निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग धर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जसन रसन बखानी।

सारे अष्टपदी। दस वस्तुले पाछे पावे, एक वस्त कान बिखोट गवावे, एक पीना दे दस भी हरले तो मूढ़ा कहो कहा करे। ठाकुर

जावत जन्म अमरा, जिसके अंतर बस है निरंकार, तिसकी सीख तरा संसार। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक उनजन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आप है मानै। आपे आप करतन बेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव सियानव सगल ते रहत, सबका जाने आत्म की राहत। इस भावत सिलाई लड़दाए, थान धरंतर रया समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी सलोक।

साधक संग मुखूजल होत सासंग बाल सगली खोत साधक संग मिटे अभिमान साधक संग प्रगटा सुगियान साधक संग बजे ब्रह्म नेरा सासंग सबो तन बेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक उभर जतन साधकी महिमा बरने कौन बरानी नानक साधकी शोभा ब्रह्मा है समानी साधक संग अगोचर मिलाए साधक संग सदा प्रफुलाए साधक संग आवे बस पंचा सासंग अमृत रस पंचा सासंग सबकी रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतु होतावे सासंग अस्तित मन भावे साधक संग माया ते पिन सासंग नानक प्रभु सुप्रसन्न सासंग दुश्मन समीत साधु कै संग महापनीत सासंग सेव नहीं बैर साधक संग ना भींगा पैर साधक संग नाई को मंदा सासंग जाने परमानंदा साधक संग नाई हो ताब साधक संग तजे सब आप अपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई साधक संग ना कब हूं ताब है साधक संग सदा सुख पाप है सासंग बस अगोचर लाहे साधु कै संग आ जा सहाय साधक संग बसेतान ऊंचा साधु कै संग महल पहुंचा साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कुल उदार है साध संग साजर मीत कुटम निस्तार।

साध की शोभा पूछते उची, साध की शोभा पूछते मुची, साध की शोभा साध मन आई नानक साध भेद न पाई सलोक, मन साचा मुख साचा सोहे, अवरना पेखा एक सबन कोहे, नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जलमय कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्प को शोक, ब्रह्म ज्ञानी का दृढ़ समान जैसे राज रंगो लागे तुल भवान, ब्रह्म ज्ञानी का तीर्ज एक जो वसुदा गऊ खोदे गऊ चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाह नानक जो पाव का सह सुबाहु, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन में प्रगा जैसे तरपुर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी के नायब महान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपने सबते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जन पर भयाव करे, ब्रह्म ज्ञानी सकल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब पर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना भया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन दे मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जूता, ब्रह्म

कबू ऊंच नीच मह बस कबू सोग हार खरंग हस कबू नैन्द चिन्ह व्यवहार कबू ऊब आकाश भयाल कबु बेता बलम विचार नानका मिलावन हार कबू नृत्य करे बापात कबू स्वय रह दिन रात कबू मां क्रोध विकराल कबू सर्व की हो त्रवाल कबू होय बह बड़ राजा कबू भिखारी नीच का साजा कबू अब कीर्त में आवे कबू भला भला कहावे जो पर्व राखे तभी राह गुर प्रसाद नानक सच कहे कबू होय पंडित करे बख्यान कबू मोहन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिसाद मुख ज्ञान कबू कीट हस्पतंग में जिया अनुग जोन पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे जो पर भावे ते मैं नचावे जो तिस भावे सोई होए नानक दूजा वर ना खोए कबू सा संगत पावे उस स्थान ते बौर न आवे अंतरे ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश मंथन ना मृतिक रंग सदा बसे पार ब्रह्म के संग

नानक गर्भ गले अष्टपति जिसके अंदर राज अभिमान सो नरक पाती हो वसमान जो जाने मैं जो बन मन सो विष्टा का जंत आपस को कर्मंत कहावे जन्म मरे बो जोन परमावे धन भूमगा जो करे गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कर बस कह हृदय गरीबी बसावे नानक यहाँ मुक्त आगे सुख बावे तरवंता कर कर बावे त्रैन समान कर संग न जावे बहुलश कर मानुख पर करे आस

मन मेरे तिनकी ओटले मंदन अपना तिन जन देहे जन जन अपना प्रभु पिछाता सो जन सर्व धोखा दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे अवर सयानम सगली शाट ते जन की तू सेवा लाग आवन जाना हुई तेरा नानक ते जन के पूजो सद पैरा सरोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसका संग सिख उतराय नानक हर गुण गाव अष्टपदी सतगुर सिखी करै प्रतपाल सेवक गुर सदा दयाल सिखी गुर दुरमत मल हरै गुर बचनी हर नाम चराय सतगुर सिखे बंधन काटे गुर का सिख बिगार ते हटाए सतगुर सिखो नाम धंदे गुर का सिख विभागी हे सतगुर सिखा हालत पल सवारे नानक सतगुर सिखो जी नाल संभारै गुर का ग्रह सेवक जो रह गुर की आ गया मन में सह आप सिखो कर काश ना जनावै हर हर नाम हृदय सत आवै मन बेचै सतगुर के पास ते सेवक के कारज रा सेवा कर तो इन्हें कामी तिसको प्राप्त स्वामी अपनी कृपा से आप करे नानक सो सेवक गुर की मतले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाना सो सतगुर जिरदे हर नाम अनक बार गुरु को बल जाओ

आठ पैर हर का नाम ले सजब दे सेवको दे मोह माया के संगना ले मन में राखे हर हरेख अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरमो दुख तहते नासे तप्त माए ठांड बरताई अनंत भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पाव चुका निर्भोय बस होए बसे सगल ब्याद मंते खै नसे जिसका साथ इन कृपा धारी सा संजम नाम मुरारी तत पाई चुके ब्रह्म गमन सुन नानक हर हर जस श्रवण निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार दिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप नाय अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जा नाई गोये सर्व निरंतर एक हो सोए ओत बोत रव्या रूप रंग भय प्रगा साध के संग्रह चरचना अपनी गल धारी अनक बार नानक बलिहारी सलोक साधना चाल बिन भजन मिखिया सगली विचार हर हर नाम कमावना नानके तनसार अष्टपदी संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर पाप समीत विसारो चरण कमल हृदय में उतारो करण कान सो प्रभ समराथ दृढ़ कर गहो नाम अलवत्थ ए तन संचो हो भगवंत संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार गुण उठता वे सो तन हर सेवा ते पावे जिस को नित बाछे मीत सो सो साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे परी करनी सा शोभा भज हर की सरणी अनुग भावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अब खदराए

आप अष्टपदी जब कार्य काशना दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संग कमाद जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हर सो कौ किसे व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म नाम हो कहाँ के सोबत परम अपन खेला भरतीजा नान करने हार न दूजा जब होवत प्रभु केवन धरी तब अंध मुग्ध कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नर्क सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए तब शिव सगत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत तराए तब कमन न डर गमन कत डराए अपन चलता अब करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपन आसन तब जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभु एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आप ही अचरजा नानक अपन रूप आप ही परजा जय निर्मल पुरख पुरख पतोता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तै शल छित्र लगत कहो कीस तै जो सुरपी जो संग समावै तै किसे भूख मंत्र बतावै करन करामन करने हार नान करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कमन माये बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला पे परवीन तै भेद गदेव कह कऊ चीन जब अपने आप उतार है तब सगन अब सगन कहा विचार है जय अपन ऊंचा अपन आप नेरा तै कौन ठाकुर कौन गये चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक प्रियगत जानू आप जा शल अशेद पे समाया वहां किसे व्याप्त माया आपस को आपे आदेश ते गुण का नाही प्रवेश जा एक एक एक भगवंता तै कौन अचिंत किस लागे चिंता जे अपने आप आपति यारा तै कौन कथे कौन सुनने हारा भावे अंदूज दे उच्चा नानक आपस को आपे बहुचा जा ब्रजो प्रपंच आकार ते गुण मैं किन्नो विस्तार पापुंत भई कहावत कहू नर को स्वर्ग वंशावत आल जाल माया जंजाल हमें मोह परम व्यापार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान अपन खेल आप कर देखा है खेल संकोच है तो नानक एक है जय अवगत भगत आप जय पसरे पासार संत प्रताप दू पाक आपे धनी उनकी शोभा और बनी आपे कौतक कर आनंद चोज आपे राजभोगन निर्जोग जिस भावित सपन नाहे लाभ है जिस भावित से खेल खिलाव है बेसुमार अथा अगंत अतुल ज्यो बुलावो त्यो नानक दास बुलै सलोक जी जंत के ठाकुरा अपे वर्तनहार नानके को पसरिया दूजा कह दिष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे का विस्तार जात भावित सृष्ट उपाय अपने बाणे लय समाये तुम ते भिन्न नहीं कुछ हुए अपन सु सब जगत जगत परोहे जागो प्रभ जीव आप जाए सच नाम सोए जन पाए सो समदर्शी तद गाभेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सब ताके हा दीन दयाल नाथ को नाथ जिस रागत गोए ना मारे सो मुआ जमनो बिसारे तिस तज अबर कहाँ को जाए उभरे राख न हार त्याय तिस तज अबर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान व्यंत पार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर्ण रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंदर जामे रहो ब्याप प्रतपाले जीवन बाबा जो जो रचे सुत से तिहाद।

जियो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपह गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न हो वई जे सोची लख वार चुपै चुप न हो वई जे लाए रहा लिवतार

अहंकार असंख मूर खांद कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भख खाहे असंख

ओंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सर पार होए अखरी नाम अखरी सलाह

गोविंद। आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुंजन सेव केते आखे आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे।

कहे न सकत केह। अचाल मूर्ति अनुपहु प्रकाश मितोज कहिजय। कोड इंद्र इंद्रान साहे साहान गनिजय। तिरपहु महीप सुर नर असुर नेत नेद बान त्रिन कहत। तवै सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत।

गाते अखंड अलिसे कर्म दृश्य धर्म सर्वा प्रणाडय अंडड बाडय चाचरी शांत वय प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरि अंग करियंग निर्नामे कामे पिजहंग प्रयाशंद चत्र चक्र कर

पवित्राय पार्थी से अदिश्य अदृश्य कृष्य भगवती शांत वय प्रसाद कहते के अछेज देसै के अभिज भेसै के अगंज कर मैं के अभंज भर मैं के अभिज लोक कै के अदित सोक कै के अवतभूत वर्ण है के विभूत करने।

खिराज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभुक्त है, परभुक्त प्रभा है, स्वयुक्त सुदा है, सदैव स्वरूप है, अपेदीन रूप है, समाहत पराज है, सदा सर्वसाज है,

अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कार्य है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्वआत्म है, आत्म वास है, जास के जास है, प्रियांग प्रयात शांत

रूपेणरेखे अकर्म अपर्म अगंजे लेखे प्रियांग प्रयाशंद नमहतर प्रणामे सुमहतर प्रनासे अगंजल नामे सुमहतल निवासे निर्कामं विभूते सुमहतल स्वरूपे कुकर्मं प्रनासी सुधर्मं विभूते

मिलैया। गाड़े गिड़ान के तोड़ निहार सुबात नहीं चकचार लवैया। साहिब श्री सब को सिरनायक जाचक, साहिब श्री सब को सिरनायक जाचक अनेक सो एक दिवैया। दानव देव फरिंद्र साचर भूत भविख भवान जपेंगे, जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाव थपेंगे था।

अड़ेल सुने गुंग जो जा सुरसना पावही सुने मूड़ चितलाए चतुरताया वही दुख दर्द पाव निकट ना तिर नर के रह हो जो जा की एक बार चाओ पई को कह चाओ पई संबद सतरह सहस पणि जय अर्ध सहस फुण तीन कहि जय।

आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया।

बिस्तर गया जाता जी अले संसार। आज मेरे मन प्रगट भया है पेखी अले धर्म राओ तह कर दल करन महाबली तिन आग लड़ी मैं रहन न जाए। जे को मुंह उपदेश करत है ता वाणतन रतड़ा नारायण बद्ध त्रिलोचन। त्रिलोचन साहब जी कहिंदे ने जिहड़ा नाम दे विच रता रहिंदा उहदे जीवन दा बेड़ा पार उतारा हो जांदा। दो शब्द जिहड़े ने बूजरी राग दे विच ने ते चौथा शब्द जिहड़ा तनहासरी राग विच है। भगत त्रिलोचन जी भगत साहब भगत नामदेव जी दे समकाली होए और नामदेव जी दे नाल भगत त्रिलोचन जी दा अत दा ज्यादा प्यार हुंदा सी। दोनों जाने मिल के मेरे वाहिगुरु निरंकार जी की इबादत बंदगी करते ने। श्री मान भाई

अंदर कूड़ सुहाओ नानक करता बणत बनाही मन मुख कूड़ बोल बोल डुबे गुरमुख तरे जप हर नाओ पौड़ी बिन बूझे वड़ा फेर पया फिर आवा जाही सतगुरु की सेवा ना कीतिया अंत गया पछताई अपनी कृपा करे गुर पाईया बिचों आप गवाई तृष्णा भुख बिचों उतरा सुख वसा मन आई सरा सरा सालाहिया हिरदय लबलाही सलोक महला तीजा जे सतगुर से भी अपना तिसनो पूजे सब को ही सबना अपावा सिर अपाऊ है हर नाम प्राप्त होए अंतर शीतल शांत बसा जप हृदय सदा सुख होए अमृत खाना अमृत पहनना नानक नाम वड़ाई होए महला तीजा ए मन गुर की सिख सुन हर पाव है गुणी निदान हर सुख दाता मन बसा हों मैं जाए गुमान नानक नदरी पाईए ता अनदन लागे ध्यान पौड़ी सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जिता तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता आनदन हर के गुण रवै गुण प्रगट किता सबना दाता एक है एको हर मिता सलोक महला तीजा ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिया जे आनदन हर लिब लाए सदगुरु पुछ सच सहम संयम कुमावै हो मैं रोग तिस जाई हर गुण गावै।

काया अंदर आप बस रहे आपे रस भोगी आप अतीत अलिप्त है निर्जोग हर जोगी जो तिस पावै सो करे हर करे सोहोगी हर गुरमुख नाम ते आई है लह जाए बिजोगी सलोक महला तीजम वाहो वाहो आप अखाएदा गुरसबदे सच सोए वाहो वाहो सिवत सलाह है गुरमुख बुझे कोय वाहो वाहो बाणी सच है सच मिलावा होए नानक वाहो वाहो कर

गणते गणी न जाए तेरा दर पड़े। ब्रह्मै तुद त्याय न इंद्र इंद्रासना, शंकर विष्णु अवतार हर जस मुख पणा, पीर पैगंबर सेख मसायक औलिए, ओत पोत निरंकार घट घट मौलिए, कूड़ो करे विनाश धर्मे तगिया, जित जित लाहे आप तित तित लगिया, सलोक महला पंजवां, चंगयाई आलक करे बुरयाई होए सेर, नानक अजकल आवसी गाफल फाही पेर, महला पंजवा, कितिया कोटंग गुजा थिया न हित, नानक तैसै ढकिया मन मैं सच्चा मित पौड़ी,

जन सोई जिसे आप बुझाए सो बुझ से निर्मल जन सोई। वाहे गुरु जी का खालसा।

सोचाय सोच न होवै जे सोची लखवार चुपाय चुप न होवै जे लाय रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियाणपा लख हो है ता एक न चलै नाल किव सचियारा होइए किव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म लै वड्याई

कोट देंदा दे लेंदे थक पा है जुगा जुगंतर खाही खा है हुक्म चलाए राहो नानक विकसा वे परवाह।

निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हसु कर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा सुमाई गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई कुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। तीर्थ नावा जे तुत पावा बिन पाने के नाई करी जे तीसर पाई वेखा बिन कर्मा के मिला लई। मत विच रतन जवाहर मानिक जे कगुर के सिख सुनी।

जे जुग चारे आरजा हुरद सुनी होए नवाखना विच जानिए नाल चला सब कोए चंगा नाव रखाई कै जस किर जगले जे तिस नदर ना आवई ता बात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोसरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे तेहा कोई न सुजय जे तुस गुण कोय करै सुनै सिद पीर सुरनाथ सुनै तर तवले आकाश

कित तन सवाल रूप कित दात जाने कौन कूत कित पसाओ एक कवाओ तिसे होए लख दरियाओ।

अहंकार असंख जापो असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख रनमुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण।

दुतद पावैसाई परे कार तुम सदा सलामत निरंकार असंख नाम असंखताव आगम आगम असंख लो असंख सिर पार हो अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संज

पवे सुमंद न जानी है सुमंद सह सुल्तान गिरह सेते माल तन कीड़े तल ना होमनी जेत सुमन हो ना विसराय अंत न सिवते क्या।

रास रहाओ हरदन केवड़ भाग वडेरे जनार हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिल त्रता साय मिल संगत गुण प्रगास जन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागिन जम पास जो सतगुरु सरण संगत ने आए त्रै जीवास जन हर जन सतगुरु संगत पाई तन धर्म मस्तक लिखिया लेखास धन धन सत संगत जत हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गूजरी महला पंजवा काहे रे मन चितवै उद्यम जा आहर हर जियो परया सैल बथर में जंतो पाए तां कार्य आगे कर तर

तालोक सदवनता कोय न गिरया सर सर जग समाए ठाकुर काहे मन भाव करया उड़ उड़ आवे सको साथ पाछे बचरे छरया तिन कवन कलावे कवन जुगावे मर मैं सिमरन करया समने दान दस सिधान ठाकुर कर तल धरया जन नानक बल बसर बल जाइया तिरंत न पारा भरया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सो

आवत संतो जी सब दुख विसारण हारा हरि आपे ठाकुर हरि आपे सेवक जी क्या नान जंतु विचारा तू कटकटे अंतर सर्व निरंतर जी हरे को ब्रग सुमाना गिता तेग पे खारे जी सब तेरे चोज विनाणा तू आपे दाता आपे भगता जी हो तो मैंने वरना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंती तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव है तुझी जन नानक तिन कुरबाना हर त्याव है हर त्याव है तुझी से जन जुग मह सुखवासी से मुकत भय जन हर त्याया जी तन तुटी जमकी फासी जिन नर पौ जन हर नर पौ त्याया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जन हर त्या जी जन नानक तिन मिल जासी तेरी भगत भंडार जी भरेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुझी अर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तब ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बस सिमरत स्वास्थ जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भला जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि प्रख्या परंपर करता जी तू देवड़ी अवरना कोई तू जुग जुगे एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुदे आपे भाव है सोई वरता जी तू आपे कर है सोई तुदे आपे सिर सब उपाई जी तुद आपे सिर सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साईं जो तो पावे सो

आप मिलाया। तुंदरियाओ सब तुझी माए, तु बिंदु जा कोई नाए, जी जन सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना है सोई जन जाना, हर गुण सदी आख बखाना, जिन हर सेवे आचन सुख।

परे की राखो शर्मा सोहेलारा गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सदगुरु प्रसाद जय कर कीरत आखिए करते काओ विचार तित कर गावो सोहेला शिवरो सृजनहार तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला हूँ वर्ज सोहेला सदा सुख होए राहो नित न जेड़ संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे ते दाते कमण सुमार संभ सहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सजने सिसड़िया जो

सुवारती होय। हर चरण कलम करंद लोभत मनोवन दिनो मोह आय प्यासा, कृपा जल दे नानी सारंग कोय दाते तेरे नाय वासा। रागौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर भरिया मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखित लिखे गुरु पाया, मनारले मंडल मंडा है। कर साधु

गए वसन सोहेला औद कटा दिन सरणा रे मन गुर मिलका सुवारे राहो यो संसार विकार संसय में तर ब्रह्म ज्ञानी जैसा जगाए प्यावे हुरा सुवा कथ कथा तन जाने जा

बहुते रपड़िया होवे को रहे न भरिए पाई। सोई काजी जने आवत जयक नाम किया आधारू है पियो सी जाए न जासी सच्चा सृजनहारू पंज वक्त नवाज गुजारे पढ़े कतेब कुरान आओ नानक आखे गुर सदई रहो पीना खाण श्री राग महला पहला घर चौथा एक सुवाण दो सुवानी नाल भलके भौंके सदा बयाल कूड़ छुरा मुठा मरदार धान करूब रा करतार मैं पत की पंद ना करनी की कार बिगड़े रूप रा बिकराल तेरा एक नाम तारे संसार मैं आस हो आधार रहाउ मुख निंदा आखा दिन रात पर कर जो ही नीच सनात काम करो तन वसे चंडाल धान करूब रा करतार फाई सुरत मलुकी वेस ठगवाड़ी ठगी देस खरा सियाणा बहुता भार तान करूब रहा करतार मैं कीता ना जाता हराम खोर हाउ क्या मोह दिस देसा दुष्ट चोर नानका नीच कहे बिचार तान करूब रहा करतार श्री राग महला पहला कर चौथा एका सुरत जेते है जी सुरत बोना कोय ना की जेही सुरत तेहा तिन राहु लिखा एको आवु जाहु काहे जी करे चतुराई लिवे दिवे ढिल ना पाई राव तेरा जी जिया का तोहे कित को साहिब आवे रोहे जोत जे तू आ साहिब आवे रोहे तू ओना का तेरे ओहे असी बोल बगाड़ बगाड़े बोल तू नदरी अंदर तोलै तोल ज करनी तै पूरी मत करनी बाजों घटे घट प्रणत नान ज्ञानी कैसा होए आ पिछाने बूझे सोए गुर प्रसाद करे बिचार सो ज्ञानी दरगे प्रवान श्री राग महला पहला घर चौथा।

दुख होए अंतरो दुख भरम कटिए सुख प्राप्त होए गुर के पाणी जो चले दुख न पावे कोई गुर के पाणी विच अमृत ऐसा जे पावे कोई जिन्ना प्राप्त तिन पिया उमे विचों कोई नानक गुरमुख नाम तिहाईए सच मिलावा होए श्री राग महला तीजा जा पिर जाने अपना तन मन आगे अगह तरे सुहागणी कर्म कुमावंदिया से कर्म करे सहजे साच मिलावड़ा साच वढाई दे भाई रे गुर बिन भगत ना होए बिन गुर भगत ना पाईए जे लोचै सब कोई रा लख चौरासी फेर पया कामण दूजे पाए बिन गुर नींद न आवई दुखी रहन विहाय बिन सबदे पिरना

जन्म मरण दुख पर हरे शब्द रहा भरपूर राम। सच सलाण से सचे सच्चा नाम उधार, सची कार कुमावनी सचे नाल प्यार। सच्चा शाह वरतदा कोई न मिटन हार, सच्चा साहु वरतदा कोई न मिटन हार। मनमुख महल न पायनी कूड़ मुठे कूड़ यार।

गुरमुख भगती जा आप कराए तन मन राता सह सबाए बाणी वजे शब्द वजाए गुरमुख भगत थाए पावने बहुताली पूरे वाजे वजाए ना को सुने ना मन वसाए माया कारण पिड़ बंद नाचे दूजे पाए दुख पावने जिसे अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता इंद्री वस सा संजम जुगता गुर कै शब्द सदा हर त्याई एहा भगत हरे पावने गुरमुख भगत जुग चारे होई होर भगत ना पाई कोई नानक नाम गुरु भगती पाई है गुर चरनी चित लावने माझ महला तीजा सच्चा सेवी सच सलाही सचे नाई दुखे कभी नाई सुख दुख दाता सेवन सुखे पाइन गुरमुख मन वसावने हौ वारी ज्यो वारी सुख सहज समाध लगावने जो हर सेवे से सदा सोहे सोभा सूरत सहावने रहो सब को तेरा भगत कहाए सही भगत तेरे बन पाए सच बाणी तुदे सलाहन रंग रातू भगत करावने सब को सचे हर जियो तेरा गुरमुख मिले ता चुकै फेरा जा तुद भावै ता नए रचावै तू आपे नौ जपावने गुरमति हर मन वसाया हर कसोग सब मोह गवाया एक स्यों लिव लागी सद ही हर नाम मन वसावने भगत रंग राती सदा तिरचाई नौ निद नाम वस्या मन आई पूरे पग सतगुरु पाया शब्दे मेल मलावने तू दयाली सदा सुखदाता तू आपे मेले गुरमुख जाता तू आपे देवे नाम बढ़ाई नाम रते सुख पावने सदा सदा साचे तुद सलाही गुरमुख जाता दूजा को नाही एक स्यों मन रहा समाई मन मनिया नहीं मने मलावणिया गुरमुख होवे सो सलाही साचे ठाकर बेपरवाही नानक नाम बसे मन अंतरे गुर शब्दे हर मिलावने माझ महला तीजा तेरे भगत सोहे साचे दरबारे गुर कै शब्दे नाम सवारे सदा आनंद रहे दिन राती गुण कै गुणी समावने हौ वारी जियो वारी नाम सुन मन वसावने हर जियो सचा ऊचो ऊचा हौ मे मार मिलावने रहाउ हर जियो साचा साची नाई गुर प्रसादी किसे मलाई गुर शब्द मिले से विछड़े नाही सहजे सच समावने तुझते बाहर कछु ना होए तू कर कर वेखे जाने सोए आपे करे कराए करता गुरमते आप मलावने कामन गुणवंती हर पाए पै पाए शिंगार बनाए सतगुरु सेव सदा सुहागन सच उपदेश समावने शब्द विसारन तिन ठौर न ठाओ परम पुले ज्यो सुंजे कर काओ हलत पलत तिन दोवे गवाए दुखे दुख विहावने लिखदियां लिखदियां कागद मसखोई दूजे पाए सुख पाए न कोई कूड़ लिखे तां कूड़ कमावे जल जावे कूड़ ते तिलावने गुरमुख सचो सच लिखे विचार सो जन सचै पावे मोख द्वार सच कागद कलम सवानी सच लिख सच समावने मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे गुर प्रसादी मिले सोई जन लेखे नानक नाम मिले वड्याई पूरे गुरते पावने माझ महला तीजा आत्म राम प्रगास गुरते होवै हौमै मैल लागी गुर शब्दी खोवै मन निर्मल अनदिन भगती राता भगत करे हर पावने हौ वारी जियो वारी आप भगती करन अवरा भगत करावने तेना भगत जना को सद नमस्कार की जै जो अनदिन हर गुण गावने रहो आपे करता

0: कारण कराए, जित पावे तिते कारे लाए, पूरे पाग गुर सेवा होवे, गुर सेवा ते सुख पावनिया, मर मर जीवे ता कुछ पाए, गुर प्रसादी हर मन वसाए, सदा मुक्त हर मन वसाए, सहजे सहज समावनिया, बहु कर्म कमावे मुक्त न पाए, दिसंतर भवे दूजे पाए खवाए, बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिने शब्दे दुख पावनिया, ताव तराखे ठाकर हाए, गुर प्रसादी परम पद पाए, सतगुर आपे मेल मलाए, मिल प्रीतम सुखे पावनिया, ए कूड़े लागे कूड़े फल पाए, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए, आप डूबे सगले कुल डोबे, कूड़ बोल बिख खावनिया, इस तन मैं मन को गुरमुख देखै, पाए भगत जां हौ मैं सोखै, सिद्ध साधक मुनतारी रहे, लिवलाए तिन पी तन मैं मन न दिखावनिया, आप कराए करता सोई, होर के करे कीता क्या होई, नानक जिस नाम देवे सो लेवे, नामो मन वसावनिया, माझ महला तीजा, इस गुफा मैं अखुट भंडारा, तिस विच वसै हर अलखा पारा, आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुर शब्दी आप मजावनिया, हउ वारी जीव वारी अमृत नाम मन वसावनिया, अमृत नाम महारस मीठा, गुरमुति अमृत प्यावनिया, रहउ हौमे मारी बजरी कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया, बिन शब्द नाम न पाए, कोई गुर कृपा ते मन वसावनिया, गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया, ज्योति ज्योत मिले मन मानिया, हर दर सोभा पावनिया, शरीर पालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बैगार दुख पाए, मन मुखे अंधे सूजे नाहीं, फिर के रियाए गुरमुख वत पावनिया, गुर प्रसादी सच्चा हर पाई, मन तन वेखे हौमे मैल जाए, बैस स्थान सदा हर गुण गावे, साचे शब्द समावनिया, नौ दर ठाकी ताब तरहाए, दसवें निज कर वासा पाए, ओथे आनंद शब्द बजे दिन राति, गुरमति शब्द सहावनिया, बिन शब्द अंतर अनेरा, ना वस्तल है ना चुके फेरा, सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुलै, नहीं गुर पूरे पाग मलावनिया, गुप्त प्रगट तू सबनी थाई, गुर प्रसादी मिल सोजी पाई, नानक नाम सला सदा तू, गुरमुख मन वसावनिया, माझ महला तीजा, गुरमुख मिले मलाए आपे, काल ना जो है दुख ना संतापे, हौमे मार बंधन सब तोड़ै, गुरमुख शब्द सुहावनिया, हउ वारी जियो वारी हर हर नाम सुहावनिया, गुरमुख गावे गुरमुख नाचे, हर सेती चित लावनिया, रहउ गुरमुख जीवै मारे परवाने, आर जन सीजे शब्द पछाण, गुरमुख मरे न काल न खाई, गुरमुख सच समावनिया, गुरमुख हर दर सोभा पाई, गुरमुख विचों आप गवाई, आप तरे सुग कुल सगले तारी, गुरमुख जन्म सवारनिया, गुरमुख दुख कदे ना लागे शरीर, गुरमुख हौमे चुकै पीर, गुरमुख मन निर्मल फिर मैल न लागे, गुरमुख सहज समावनिया, गुरमुख नाम मिलै वडियाई, गुरमुख गुण गावे सोभा पाई, सदा आनंद रहे दिन राति, गुरमुख शब्द करावनिया, गुरमुखे अंदन शब्दे राता, गुरमुखे जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल, शब्दे भगत करावनिया, बाज गुरु है अंध अंधारा, जमकाल गरठे करे बिकारा, अंधन रोगी बिष्टा के कीड़े, बिष्टा मैं दुख पावनिया, गुरमुखे आपे करे कराए, गुरमुख हिरदे बूठा आपे आए, नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुर ते पावनिया माझ महला तीजा एका जोत जोत है शरीरा शब्द दिखाई सतगुर पूरा आपे फर्क कितोन कटे अंतरे आपे बंत बना मनिया हौ वारी जीव वारी हर सच्चे के गुण गावनिया बाज गुरु को सहज न पाए गुरमुख सहज समावनिया रहो तू आपे सोहे आपे जग मोहे तू आपे नदरी जगत परो वह तू आपे दुख सुख देवे करते गुरमुख हारे दिखावनिया तू आपे करता करे कराई आपे शब्द गुरु मन बसाए शब्द उपजाए अमृत बाणी गुरमुखे आख सनावनिया आपे करता आपे भुगता बंधन तोड़े सदा है मुक्ता सदा मुक्त आपे है सच्चा आपे अलख लखावनिया आपे माया आपे छाया आपे मो सब जगत उपाया आपे गुणदाता गुण गावी आपे आख सुनावनिया आपे करे कराए आपे आपे था पू था पे आपे तुझते बाहर कछू ना होवे तू आपे कारे लावनिया आपे मारे आप जवाए आपे मेले मेल मलाई सेवा ते सदा सुख पाया गुरमुख सहज समावनिया आपे ऊंचा ऊंचो होई जिसे आप बिखाले सो वेखे कोई नानक नाम बसे कट अंतरे आपे वेख बलखालनिया माझ महला तीजा मेरा प्रभ परपुर हा सब थाई गुर प्रसादी कर ही मैं पाई सदा सरे भी एक मन ते आई गुरमुख सच समावनिया हौ वारी जीव वारी जग जीवन मन बसावनिया हर जग जीवन नर पाउ दाता गुरमत सहज समावनिया रहो कर मैं तरती तौल अपर ताला कर ही मैं प्रीतम सदा है बाला सदा आनंद रहे सुखदाता गुरमत सहज समावनिया काया अंदर हौमे मेरा जमन मरना चुके फेरा गुरमुख होवे सु हौमे मारे सचो सच ते आवनिया काया अंदर पाप पुन दुई भाई दो मिल कै सिष्ट उपाई दो में मार जाए कित कर आवी गुरमति सहज समावनिया कर ही माहे दूजे पाए अनेरा चानन होवे छोड़े हौमे मेरा प्रगट शब्द है सुखदाता आंदन नाम ते आवनिया अंतर जोत प्रगट पसारा गुरसाखी मिटिया अंधियारा कमल बिगा सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मलावनिया अंदर महल रतनी परे पंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा गुरमुख वणजे सदा वपारी लाहा नाम सद पावनिया आपे वथ राखे आपे देहे गुरमुख वणजे के नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावनिया माझ महला तीजा हरे आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द पौ दूजा जाए हर निर्मल सदा गुण दाता हर गुण मैं आप समावनिया हौ वारी ज्यो वारी सत सच्चा हिरदे वसावनिया सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावनिया रहो आपे गुरदाता कर्म विदाता सेवक सेवे गुरमुख हर जाता अमृत नाम सदा जन सोहे गुरमति हर रस पावनिया इस गुफा मैं एक थान सुहाया पूरे गुरे हमे परम चुकाया अंधन नाम सलाहन रंग राती गुर कृपा ते पावनिया गुर कै शब्द एक गुफा बिचारी नाम निरंजन अंतर वसे मरारे हर गुण गावे शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावनिया जम जगाती दूजे पाए कर लाए नाम पूले दे सजाए कड़ी मौत का लेखा लेवे रत्यो मासा तोल कडामनिया पे अड़े प्रचेते नाही दूजे मुठी रोवे ताही खड़ी कवाली क्रूप कलखनी सुपने पर नहीं पावनिया पई अड़े पिर मन बसाया पूरे गुरु शव दूर दिखाया कामन पे रखिया कंठ लाही शब्दे पर रावे सहज सहामण आपे देवे सद बलाई अपना नौ मन वसाई नानक नाम मिले वड्याई आन दिन सदा गुण गावण माझ महला तीजा उत्तम जन्म स्थान है वासा सतगुरु सेवे कर महे उदासा हर रंग रहे सदा रंग राती हर असमन तृपता मणिया हऊ वारी जिउ वारी पढ़ बूजे मन वसावण गुरमुख पढ़े हर नाम सलाही दर सचे सोभा पावण रहो अलखा पेव सदा रहा समाले अलखा पेव हर हा समाई उपाय न किती पाया जाई किरपा करे ता सतगुर पेटे नदरी मेल मलावण दूजे पाए पड़े नहीं बूजे तिरबद माया कारण लूजे तिर बंदे बंधन टूटे गुर शब्दे मुक्त करावण ए मन चंचले वस न आवे दुविधा लागे दह दिसतावे बेका कीड़ा बिक मैं राता बिख ही महे पचावण हौ हौ करे ताय आप जनाई बहुकर्म करे किसे थाए न पाए तुझते बाहर किशु न होवै बख्शे शब्द सहावण उपजै पचै हर बूजै नाही आंदन दूजै पाए फराही मनमुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावण पिर परदेश सिंगार बनाई मनमुख आंदी कैच कर्म कमाई हलतना सोभा पलतना टोई बिरथा जन्म गवावण हर का नाम किन विरले जाता पूरे गुर कै शब्द पछाता अन दिन भगत करे दिन राती सहजे ही सुख पावण सब मैं वरते को सोई गुरमुख बिरला पूजे कोई नानक नाम रते जन सोहे कर कृपा आप मिलावण माझ महला तीजा मनमुख पढ़े पंडित कहावे दूजे पाए महा दुख पावे बिख्या माते के सूजे नाही फिर जोनी आवण हऊ वारी ज्यो वारी हौ मे मारी मिलावण गुरसेवाती हर मन वसया हर रस सहज पियावण रहो वेद पढ़े हर रस नहीं आया वाद बिखाने मोहे माया अज्ञान मती सदा अंधियारा गुरमुख बूझ हर गावण कथो कथिया शब्द सहावे गुरमति मन सचो भावे सचो सच रवे दिन राती ए मन सच रंगावण जो सच रते तिन सचो पावै आपे दे न पछो तावै गुर कै शब्द सदा सच जाता मिल सचे सुख पावण कूड़ कुश्त तिना मैल न लागे गुर प्रसादी अन दिन जागे निर्मल नाम वसै कटया पीतर ज्योति ज्योत मिलावण त्रै गुण पढ़े हर तत न जाने मूल है पूले गुर शब्द न पिछाने मोह व्यापी के सूजे नाही गुर शब्दे हर पावण वेद पकारे तिरब दमाया मन मुख ना बूझे दूजे पाया त्रै गुण पड़े हर एक न जाने बिन बूझे दुख पावण जा तिस पावे ता आप मलाहे गुर शब्दे सहसा दुख चकाए नानक नामे की सच्ची वड्याई नामो मन सुख पावण माझ महला तीजा निर्गुण शरगुण आपे सोई तत पसाने सो पंडित होई आप तरे सगले कुल तारे हर नाम मन वसावण हौ वारी जीव वारी हर रस चाखे साधे पावण हरे रह चाखे से जन निर्मले निर्मल नाम ते आवण रहो सो निहकर्मी जो शब्द विचारी अंतर तत ज्ञान हौमे मारे ना पदार्थ ना निद पाई त्रै गुण मेट समावण हौ मैं करे निहकर्मी ना होवे गुर प्रसादी हौ मैं खोवै अंतर विवेक सदा आप विचारी गुर शब्दी गुण गावण हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगै नित गुरमुख होई इशनान करहै सदा दिन राती हम में मैल चकामणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यारी हर सर्वसे हम में मारे एनस प्रीत शब्द साचे हरे सर्वसा पावणिया मनमुख सदा बग मैला हम में मल लाई इशनान करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द विचारे हम में मैल चकामणिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसादी मिटिया अंधियारा कट चन ने आप पछाननिया आप उपाई तैं आपे वेखे सतगुरु सेवै सो जन लेखे नानक नाम बसे कट अंतरे गुर किरपा ते पावणिया माझ महला तीजा माया मोह जगत सुभाया त्रै गुण दी से मोहे माया गुर प्रसादी को विरला बूजे चौथे पद लिव लावणिया हौ वारी जीव वारी माया मोह शब्द जलावणिया माया मोह जलाए सो हर सो चितलाए हर दर मैली सो बा पावणिया रहौ देवी देवा मूल है माया सिमरत शास्त्र जिन्ने उपाया काम क्रोध पसरिया संसारे आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन एक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जत सत संजम सत कमावे गुरे पूरे नाम ते आवणिया पाई अड़े तन परम चुक पलानी दूजे लागी फिर पछताणी हलत पलत दोवे गए सुपने हलत पलत दोवे गवाए सुपने सुख ना पावणिया पाई रड़े तन कंत समाले गुर प्रसादी वेखे नाली फिर के सज रहे रंग राती शब्द सिंगार बनावणिया जन्म मरण सफल जन्म जिन सतगुरु पाया दूजा पाउ गुर शब्द जलाया एको राव रहा कटे अंतर मिल सतसंगत हर गुण गावणिया सतगुरु ना सेवे सो काहे आया त्रिक जीवन बिरथा जन्म गवाया मनमुख चित न मनमुख नाम चित ना आवी बिन नामे बहु दुख पावणिया जिन शिष्ट साजी सोई जाने आपे मेले शब्द पछाणे नानक नाम मिलिया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखावणिया माझ महला चौथा आद पुरख अंपर पर आपी आपे थापी थाप उथापी सब मैं वरते को सोई गुरमुख सोभा पावणिया हौ वारी जियो वारी निरंकारी नाम ध्यावणिया तिस रूप ना रेखिया कट कट देखिया गुरमुख अलख लिखावणिया रहो तू दयाल किरपाल प्रभ तू तू दयाले किरपाल प्रभ सोई तुझबिन दूजा अवर न कोई गुर प्रसाद करे नाम देवे नामे नाम समावणिया तू आपे सच्चा सिरजनहारा भक्ति परे तेरे भंडारा गुरमुख नाम मिले मन पीजे सहज समाध लगावणिया आंडन गुण गावा प्रभ तेरे तुद सलाही प्रीतम मेरे तुद बने अवर न कोई जाचा तू परे गुर प्रसादी तू पावणिया अगमा गोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करे तू लेहो मलाई पूरे गुर कै शब्द ते आईया शब्द सेव सुख पावणिया रसना गुणवंती गुण गावै नाम सलाहे सच्चे पावे गुरमुख सदा रहे रंग राती मिल सच्चे सोभा पावणिया मनमुख कर्म करे हंकारी जुवै जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गबारा फिर फिरे आवन जावणिया आपे करता दे वडियाई जिन को आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ पंजन गुर शब्दी सुख पावणिया माझ महला पंजमा कर पहला अंतर अलख ना जाई लखिया नाम रतन लै गूजा रखिया अगमा गोचर सब ते उचा गुर कै शब्द लिखावणिया हौ वारी जियो वारी कल मैं नाम सुनावणिया संत प्यारे साचे तारे वडपागी दर्शन पावणिया रहो साधक सिद्ध जिसे को फिर दे ब्रह्मे इंद्र त्यायन हिरदे कोट तेसा खोजे जाको गुरमिल हिरदे गावणिया आठ पैर तुद जापे पवना धरती सेवक पाए चरण खाणी बाणी सर्व निवासी सबना कै मन भावणिया साचा साहिबे गुरमुख जापी पूरे गुर कै शब्द संजापे जिन पिया सोई तृपतासी सचे सच अकावणिया तिस्कारे सहजा सोई सहेला नंद बनोद करे सदकेला सो तनमंता सो वडसाहा जो गुर चरनी मन लामणिया पहलों दे तै लिजिक समाहा पिछो दे तै जंत उपाहा तुद जे वडे दाता यावर न स्वामी लवे न कोई लामणिया जिस तू बूठा सो तो त्याई सात जना का मंत्र कमाई आप तरे सगले कुल तारी तिस ठाक दरगह ठाक ना पावणिया तू वडे तू वड्डा तू ऊचो ऊचा तू बेअंत अतमूचो मूचा हौ करबाणी तेरे वंजा नानक दास दसावणिया माज महला पंजवा कौन सुमुक्ता कौन सुजुगता कौन सुग्यानी कौन सुभगता कौन सुगिरहे कौन उदासी कौन सुकीमत पाई जियो किन बिद बादा किन बिद छूटा किन बिद आमन जामन टूटा कौन करमे कौन नेह करमा कौन तू कहे कहाई जियो कौन सुसुखिया कौन सुदुखिया कौन सुसनमुख कौन बेमुखिया किन बिद मिलिया किन बिद विछड़ा ए बिदे कौन प्रगटाई जियो कौन सुअखर जितावत रहता उपदे कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता कौन सुचाल जित पारबम त्याही किन बिद कीर्तन गाई जियो गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता तन गिरहे उदासी गुरमुखी गुरमुख कीमत पाई जियो हौ मैं बदा गुरमुख छूटा गुरमुख आमन जामन टूटा गुरमुख कर्म गुरमुख ने कर्मा गुरमुख करे सुबो सुबाई जियो गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरमुख सनमुख मनमुख बेमुखिया गुरमुख मिलिया मनमुख विसरै गुरमुख बिद प्रगटाई जियो गुरमुख अकर जितावत रहता गुरमुख उपदेश दुख सुख सम सहता गुरमुख चाल जित पारबम त्याई गुरमुख कीर्तन गाई जियो सगली बंत बनाई आपी आपे करे कराई थापी एक स्ते होयो अनंता नानक एक समय समाई जियो माज महला पंजवा प्रभ बनासी ता क्या काड़ा हर भगवंता ता जन खड़ा सुखाला जी प्राण मान सुखदाता तू करे सोई सुख पावणिया हौ वारी जियो वारी गुरमुख मन तन पावणिया तू मेरा परबत तू मेरा उल्ला तुम संग लवे न लावणिया रहो तेरा कीता जिस लागे मीठा कट कट पार ब्रह्म तिन जन डीठा थान थन अंतर तू है तू है एको एक वर तावणिया सगल मनोरथ तू देवनहारा भगति पाई परे पंडारा दया तार राखी तुद सोई पूरे कर्म समावणिया अंध कूब ते कांडे चारे कर कृपा दास नदर निहाले गुण गावे पूरन अबनासी कै संतोट न आवणिया ऐथे उथे तू है रखवाला मात गर्भ मैं तुम ही पाला माया अगन न पोहे तिनको रंग रत्ते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख समाली मन तन अंतर तुद नदर निहाली तू मेरा मीत सजन मेरा स्वामी तुद बिन अवर न जानणिया जिन जिसको तू प्रभ पया सहाई तिस तत्ती वाओ न लागे काई तू साहिब सरन सुखदाता सत संगत जा प्रगटावणिया तू ऊच था अपार अमोला तू साचा साहिब दास तेरा गोला तू मेरा साचा ठुकराई नानक बल बल जावणिया माज महला पंजवा कर दूजा निद दे संभालिया मूल न मनो विसारिया रहो संतां संगत पाईया जित जम कै पंथ न जाइया तोसा हर का नाम लै तिर कुलह न लागे गल जियो सोम समरन दे साइया नरक न सही पाईया ताती वाओ न लगी जिन मन बूठा आई जियो से सुंदर सोने साध संग जिन बहने हर तुन जिनी संजया से गंभीर अपार जियो हर अम्यो रसायन पीविया मुंह दिठे जन कै जीविया ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਨਿਤ ਪੂਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਉ ਜੀਓ, ਜੋ ਹਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਤਿਨੇ ਗੁਸਾਈ ਜਾਪਣਾ, ਸੋ ਸੂਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੋਈ ਮਸਤਕ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਗ ਜੀਓ, ਮਨ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਵ ਗਾਹੀਆਂ, ਇਹ ਰਸੀ ਭੋਗਣ ਪਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਉਪਜਿਓ, ਤਰੇ ਸੱਚੀ ਕਾਰੇ ਲਾਗ ਜੀਓ, ਮਨ ਕਰਤਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਜਨਮੇ ਕਾ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਪਵੰਦਾ ਕੰਤਿ ਹਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਥਿਰ ਹੋਆ ਸੁਹਾਗ ਜੀਓ, ਟਲ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ, ਪੈ ਪੰਜਣ ਕੀ ਸਰਨਾਇਆ, ਲਾਏ ਅੰਚਲੇ ਨਾਨਕ ਤਾਰੀਅਨ, ਜੀਤਾ ਜਨਮਾ ਪਾਰ ਜੀਓ, ਏਕ ਓਂਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਤੀਜਾ, ਹਰ ਜਪੈ ਜਪੇ ਮਨ ਤੀਰੇ ਰਹੁ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਿਟ ਗਏ ਪੈ ਦੂਰੇ, ਸਰਨ ਆਵੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹੇ ਚੂਰੇ, ਚਰਨ ਸੇਵ ਸੰਤ ਸਾਧਕੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਕਟ ਕਟ ਏਕ ਵਰਤਦਾ ਜਲ ਥਲ ਮਹਿਲ ਪੂਰੇ, ਪਾਪ ਬਿਨਾਸਨ ਸੇਵਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ, ਸਭ ਛਡਾਈ ਖਸਮ ਆਪ ਹਰ ਜਾ ਪਈ ਠਰੂਰੇ, ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਤਪਾਵਸੋ ਦੁਸ਼ਟ ਮੂਏ ਹੋਏ ਮੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਸੱਚ ਨਾਇ ਹਰ ਵੇਖੇ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ। ਬਾਰਾਂ ਮਹਾਂ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਚੌਥਾ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸ ਪਰਮੈ ਥਕ ਆਈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ, ਧੇਣ ਦੁਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ, ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਕੁ ਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ, ਹਰ ਨਹਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੱਜਣਾ ਕਦ ਪਾਈਆ ਬਿਸਰਾਮ, ਜਿਤ ਕਰੇ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟੀ ਪਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗਰਾਮ, ਸਰਬ ਸਿੰਘੋਰ ਤੇ ਬੋਲ ਰਸ ਸਨ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ, ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣਿਆ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਨੰਤੀਆਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਜੈ ਨਾਮ, ਹਰ ਮੇਲੋ ਸਵਾਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਚਲ ਤਾਮ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦਾ ਰਾਧਿਆ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਣਾ, ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸੇ ਗਣਾ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਨਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਹਿਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੀ ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਗਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿੰਨਾ ਪਾਗ ਮਨਾ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ, ਚੇਤ ਮਲਾਈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਏ ਲਗਾ, ਵਿਸਾਖ ਤਿਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਐ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਹ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਿਤਰਨਾ ਸੰਗਤਣਾ ਹਰ ਅਬਨਾਸੀ ਉਹ, ਪਲਚ ਪਲਚ ਸੁਗਲੇ ਮੋਏ ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਮੋਹ, ਏਕ ਸਹਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈ ਆਖੋਹ, ਦੇ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲੱਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਨਾਨਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਵਿਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਸੰਤ ਪੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ, ਹਰੇ ਜੇਠ ਚਰਿੰਦਾ ਲੋੜੀਐ ਜਿਸ ਆਗੇ ਸਭ ਨਿਵਨ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨ ਦੇਈ ਬਨ, ਮਾਨਿਕ ਮੋਤੀ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਉਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਸਨ, ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਰਾਇਣ ਜੇਤੇ ਮਨ ਪਵਨ, ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜੀ ਕਰਨ, ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇ ਕਹੀਆ ਤਨ, ਆਪਣ ਲਈ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛੜ ਕਿਉ ਰਵਨ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਨਨ, ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਤਣੀ ਜਿਸ ਕੇ ਪਾਗ ਮਥਨ, ਅਸਾੜਤ ਪੰਥਾ ਤਿਸ ਲਗੇ ਹਰ ਨਹੋ ਨ ਜਿਨਾ ਪਾਸ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਦੁਏ ਪਾਏ ਵਿਗੁਚਿਆ ਗਲ ਪਾਏ ਸਜਮ ਕੀ ਫਾਸ, ਜੇ ਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ, ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਰਾਸ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਪੇਟਿਆ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤਿਰ ਚਰਨਨ ਹੋਏ ਤਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ, ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, सार सहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणे चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग एको नाम अदार बिखिया रंग कुड़ाव्या दिसन सब इशार हर अमृत बूंद सहावनी मिल साधु पी मनहारी वन तिन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपारी हर मिलने नू मन लोचदा करम लामनहार जिन्नी सखिये प्रभ पाया हव तिन कै सद बलहारी नानक हर जी मया करे शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागणी जिन राम नाम और हार पादो परम पुलाणिया दूजा लगा हीत लख सिंगार बनाया कारज नाही कीत जे दिन देह बिनससी तित वेले कैसन प्रेत पकड़ चलाए ने दूत जम किसे न देनी पेत छड़ खड़ोते खिने मैं जिन स्यों लगा हीत हाथ मरोड़े तन कपे स्वाह हो आसीत जे हा बीजे सोलुणै करमा संदड़ा खेत नानक प्रभ सरनागती चरण बोहित प्रभ देत से पादो नरक न पाईऐ गुर रखन वाला हित असन प्रेम माहड़ा क्यों मिलिया हर जाई मन तन प्यास दर्शन कनी कोई आन मिलावे माए संत सहाई प्रेम के हो तिन के लागा पाए बिन प्रभ क्यों सुख पाईऐ दूजी नाही जाए जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे अकाई आप त्याग बेनती करे लिहो प्रभ लड़ लाए जो हर कंत मिलाई है से विछड़ कते ना जाए
1: प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर शरण आए असु सुखी वसंदी आज ना मया हर राय कत्ता के कर्म कमावणे दोस न काहू जोग परमेसर ते भुल्या व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिंद मैं कौड़े होए गए जितड़े माया भोग वेचना कोई कर सकै किस थै रोवहि रोज कीता किछु न होवै लिखिया तुर संजोग वड भागी मेरा प्रभ मिलै तां उतरे सब वियोग नानक को प्रभ राख लेहे मेरे साहिब बंदी मोच कत्तक होवै साध संग बिनसे सबे सोच मंगिर महे सुहंदिया हर फिर संग बैठड़िया तिनकी सोभा क्या गणी जे साहिब में लड़िया तन मन मौलिया राम से संग साध से लड़िया साध जना ते बाहरी से रहन के लड़िया तिन दुख न कबहू तरह से जम के बस पड़िया जिनी रावया प्रभ अपना से दिस नित खड़िया रतन जिवे हर लाल हार कंठ तिना जड़िया नानक बंश है धूड़ तेन प्रभ सरणी दर पड़िया मंगेर प्रभ आराधना बहुण न जन्मड़िया भोग सुकार नव्या पई कंठ मिलिया हर नाहो मन विद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा साहो ओड गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाहो लिखिया पोहे न सकई मिल साधु गुण गाहो जहते उपजी तह मिली सच्ची प्री समाहो कर गलिनी पार ब्रह्म बहुण न विछुड़िया हो पार जाओ लख बेरिया हर सज्जन अगम गाहो सरम पई नारायण नानक दर पई आहो भोग सुहंदा सर्ब सुख जिस बख्से वे प्रवाहो माघ मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर स्नान हर का नाम त्याय सुन सबना नो कर दान जन्म कर्म मल उतरै मन ते जाए गुमान काम क्रोध न मोहिया बिन सह लोभ सुहान सच्चा मार्ग चल दिया उस्त करे जहान अठसठ तीर्थ सगल पुन जी दया परवान जिसनो देवे दया कर सोई पुरख सुजान जिना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन गुरबान माघ सुचे से कांडी है जिन पूरा गुर मेहरवान फालगुण आनंद पार जिना हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए सेज सुहावी सर्ब सोखण दुखा नाही जाए इशपुनी वड भागणी वर पाया हर राय मिल सहिया मंगल गा वही जीत गीत गोविंद अलाए हर जेहा वरन दिसई कोई दूजा लवै न लाए हालत पालत सुवार निचल दितियन जाए संसार सागर ते रखियन बहुण न जन्म ताए जेवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए। फालगुण नित सा लाहिए जिसनों तिल ना तमाए जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे। हर गुर पूरा आराध्या दरग है सच खरे सर्व सुखा निद चरण हर भाव जल बिखम तरे। प्रेम भगत तिन पाईया बिख्या नाहे जरे कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे। पार ब्रह्म प्रभ सेव दे मन अंदर एक तरे महा दिवस मूरत भले जिस कौ नदर करे।

संसार पुत्ती गंड पवै संसार राजा मंगै दित्तै गंड पाए भुखिया गंड पवै जा खाए काला गंड नदिया मीह झोल गंड प्रीति मिठे बोल बेदा गंड बोले सच कोए मोया गंड नेकी सत होए एत गंड वरतै संसार मूर्ख गंड पवै मोहे मार नानक आख्या इहो विचार सिफती गंड पवै दरबार पौड़ी आपे कुदरत साजक आपे करे विचार एक खोटे एक खरे एक आपे परखनहार खरे खजाने पाईऐ खोटे सटिए बाहर बार खोटे सच्चे दरगह सुटिए किसे आगे करे पुकार सतगुर पिछे भज पवे हा करनी सार सतगुर खोट्यों खरे करे।

ना सूर सस मंडलो ना सप्त दीप नह जलो अन्न पौन थिर थिर ना कोई एक तुई महला पहला ना रिजक दस्त आकसे।

हुई सुरत वा बाद अहंकार ओहो नाम हुआ जे देखन हार ओहो नाम हुआ जो देखन हार जय कारण ताट तीर्थ जाही रतन पदार्थ घट ही माही पाड़ पाड़ पंडित बाद बखाने पितर होदी वस्त न जाने हो नाम हुआ मेरी मुई बलाए ओहो नाम हुआ जो रहया समाए कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया मरता जाता नदर ना आया गौड़ी महला पहला दखनी सुन सुन बुझै मन नाओ ता कै सद बलिहारे जाओ आप भुलाए ठौर ना ठाओ तू समझावे मेल मिलाओ नानक मिलै चलै मैं नाल बिन नावै बाधी सब काल रहाओ खेती बणज नावै की ओट पाप पुन बीज की पोट काम क्रोध जी मह चोट नाम विसार चले मन खोट

हुकम संजोगी गढ़ दस द्वार पंच वसे मिल जोत अपार आप तुले आपे वणजार नानक नाम सवारण हार गौड़ी महला पहला जातो जाए कह कहां ते आवे जह पुजे कह माहे समावे कह पुजे कह जाए समावे क्यों बाध्यो क्यों मुक्ति पावे क्यों अविनाशी सहज समावे नाम हृदय अमृत मुख नाम नर हर निहकाम रहाओ सहज आवे सहज जाए मन ते उपजे मन माहे समाए गुरमुख मुख तो बंद न पाए शब्द विचार छुट्टे हर नाए तरवर पंखी बहु निस बास सुख दुखिया मन मोह विनाश साज बिहाग तक हे आगास दहज सतावे कर्म लिखियास नाम संजोगी गोयल थाट काम क्रोध फूटे बेखमाट बेन वखर सुनो कर हाट गोर मिल खोले बजर कपाट साध मिले पूर्व संजोग सच रहसे पूरे हर लोग तन मान तन दे लै सहज सुभाए नानक तिनकै लागो।

राम भगत गुर सेवा तरना बहड़े जन्म न होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कहे सब कोई सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई बेन गुर अर्थ विचार न पाया मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जाके हृदय वस्या हर सोई गुरमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरमत पाए परमानंद जिन पाया गुर देख दिखाया आसा माहे निराश बुझाया दीना नाथ सर्व सुखदाता नानक हर चरणी मन राता। गावड़ी चेती महला पहला अमृत काया रह सुखाली ब्याजी इहो संसारो लाभ लोभ मोच कूड़ कमावे बहुत उठा वह पारो। तू काया मैं रुलदी देखी ज्यो तार उपर शारो सुन सुन सिख हमारी सुगिरत कीता रहसी मेरे जीअड़े बहुण नया व्यवारी रहाओ। हाओ तुद आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी निंदा चिंदा करे पुराई झूठी लायत बारी वेल पराई जो हे जीअड़े करे चोरी बुरियारी हंस चलिया तू पिछे रही हे छुट्टड़ आ होई है बनारी। तू काया रही है सुपनंतर तुद क्या कर्म कमाया कर चोरी मैं जाक चलिया तामन भला पाया हालत न पसोबा पालत न ढोई अहला जन्म गवाया। हो खरी दुहेली होई बाबा नानक मेरी बात ना पुछे कोई रहाओ। ताजी तुरकी सोय ना रूपा कपड़ घेरे पारा किसी नाल न चले नानक झाड़ चढ़ पे गवारा। ऊजा मेवा मैं सब किस चाखिया एक अमृत नाम तुम्हारा दे दे नीव निवा देवाल उसारी बस मंदिर की ढेरी। संचे संचन देई कैसी आंद न जाने सब मेरी संचे संचन देई कैसी आंद जाने सब मेरी सोयने लक सोयने सोयन लंका सोयन माड़ी संपै किसे न केरी। सुन मूर्ख मन अजाना होर तिसे का पाना रहाओ साहो हमारा ठाकुर पारा हम तिसके बन जा रे। जियो पिंड सब रास्त सह की मार आपे जी वाले गौड़ी चेती महला पहला। आवर पंच हम एक जना क्यों राखे घर बार मना मारे लूठे नीत नीत किसे आगे करी पुकार जना श्री राम नामा उचर मना आगे जाम दल बिखम का ना रहाओ। उसार मनोली राखे द्वारा पीतर बैठी सात रामृत केल करे नित कामण अवर लुटेन सो पंच जना। ढाहे मनोली लुटिया देहरा सातन मकड़ी एक जना जमडंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना। काम लोड़ा काम लोड़ा सोयना रूपा।

समत हरम नम सुमत रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवकद हर नाम हर साते तेन के पाप दुख साब बिंस जो गुरमत राम रस खाते जैन को लिखत है लिखे तुर मस्तक ते गुरसंतोख सर नाते दुरंत महल गई साब तेन की जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप आप प्रब ठाकर तुम जिवड़े वरना दाते जन नानक नाम लयता जीव हर जपिए हर कृपाते गौड़ीपुर महला चौथा करो कृपा जग

मन तन भेद लियो हर साचे। जकाल कै मुख जगत सब ग्रस्या, गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहाओ। जिन को प्रीत नहीं हर से तीते सकत मूड़, नर काचे तिन को जन्म मरण अत भारी बिच। विष्ट मर मर पाचे तुम दयाल शरण प्रतालक, तुम दयाल शरण प्रतपालक। मोको दीज दान हर हम जाचे, हर के दास दास हम की जय। मन निरत करे कर नाचे, अब साह बड़े प्रभ स्वामी। हम जारे है ताचे, मेरा मर तन जीरा साहब तेरी। जन नानक साह प्रभ साचे, गौड़ी पूर्वी महला चौथा। तुम दयाल सर्व दुख भंजन, एक बिनो सुनो देखा नहीं जिसते तुम हार। जन स्वामी सो सतगुर मेल मेरा प्राणे, राम हम सतगुर पर ब्रह्म कर माने। हम मूड मुगत सुध मत होते, गुर सतगुर के बचन हर हम जाने रहा। जितने अन रस रस हम देखे सब तितने पीक फिकाने। हर का नाम अमृत रस चके, मिल सतगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सतगुर नहीं भेटिया ते सकत मूड दिवाने। तिनक कर्म ही न तुर पाए, देख दीपक मोह पचाने। जिनको तुम दयाल कर मिलो ते हर हर सेव लगाने। जन नानक हर हर हर जप प्रगट मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्व महला चौथा, मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी। को कथे हार पौ नसिया, हर आपे बख्श लय प्रभ साचा। हर आप छाए छुटिया, मेरे मन जप हर हर हर मन जपिया। सतगुरु की शरणाई भज पौ मेरे मन, गुर सतगुरु पीछे छुटिया राव। मेरे मन सेव सो प्रभ सर्ब सुख दाता, जित सेवे निज कर वसिया। गुरमुख जाय लहो घर अपना, घास चंदन हर जस घसिया। मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम लला, हर मन हसिया। हर हर आप दया कर देव त अमृत हर रस चखिया। मेरे मन नाम बिना को दूजा लागे, मेरे मन नाम बिना जो दूजा लागे। ते साकत नर जम कुटिया, ते साकत चोर जिना नाम विसारिया। मन तिन के निकट न पिटिया, मेरे मन सेव लख निरंजन नर हर जेते सेव लेखा छुटिया। जन नानक हर प्रभ पूरे किए, किन मासा तोल न कटिया। गौड़ी पूर्व महला चौथा, हमरे प्राण वसकत प्रभ तुमरे

ले लाग संगत करुआ मीठा घोड़ी पूर्वी महला चौथा हर हर अर्थ श्री राम बेचिया पूरे गुर के आगे सतगुर दत्त नाम दिड़ाया मुख मुख भाग सुभागे राम गुरमत हर लिव लागे रहाओ कट कट रमैया रमत राम राहे गुर शब्द गुरु लिव लागे हाँ मन तन दे बुकाट गुरु को मेरा भ्राम पाओ गुर बचनी भागे अंधियार है दीप ज्ञान जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागे अज्ञान अंधेरा बिनस बिनास्यो कार वस्त लही मन जागे साकत बदक माया तारी तेन जम जोहन लागे उन सतगुरु अग सीछन बेच आवे आवे जाहे पागे हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगे जिन नानक लाजपात गुरु है सिर बेचियो सतगुरु अगे गौड़ी पूर्व महला चौथा हम अंकार अंकार अज्ञान मत है गुर मिले आप गवाया हमें रोग गया सुख पाया धन धन गुरु हर राया राम गुर के बचन हर पाया रहा मेरा हीरे प्रीत राम राय की गुर मार्ग पंथ बताया मेरा जो पिंड सब सतगुर आके जिन बिछड़िया हर गल लाया मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया सहज आनंद पया मन मोर गुर आगे आप बिचाया हम पार पाप बकीने कर दुष्टि चोर चुराया अब नानक शरणागति आए हर राखो लाज हर पाया गौड़ी पूर्व महला चौथा गुरम बाजे शब्द अनाहद गुरमत मनुआ गावे बड़भागी गुर दर्शन पाया धन धन गुरु लिव लावे गुरमकार लिव लावे राव हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे हम मल मल तो वह पाप गुरु कहे हम मल मल तो वे पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावे हृदय गुरमत राम रसायन जब हर गुण गावे मन रसक रसक हरा सागा ने फिर बहुड़ न भूख लगावे कोई करे उपाव नेक बहु तेरे बिन कृपा नाम न पावे जन नानक कहो हर कृपा तारी मत गुरम नाम दृढ़ावै रा गौड़ी माज महला चौथा गुरमुख जिंदु जप नाम क्रम मत माता मत जियो नाम मुख रामा संतोख पिता गार गुर पुरख जन्मा वड़भागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलया रंग माणी जियो गुरु हर अंग रतड़ा सद निर्वाणी जियो बड़भागी मेल सुगुर सुजानी जियो मेरा मंथन हर रंग भिन्ना आवो संतो मिल नाम जपावे संगत नाम सदा लै लाह जियो कर सेवा संता

ला चौथा मेरा बिरह नाम मिले ता जीवा जियो मन अंदर अमृत गुरमत मन लीवा जियो मन हर रंग रतड़ा हर रस सदा पीवा जियो हर पायड़ा मन जीवा जियो मेरा मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो हो नाम मिठों कुर्बान जियो हो हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसो संतोह जी हर खोज पुआई जियो सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो हर नामे नाम समाई जियो मैं वेदन प्रेम हर ब्रह लगाई जियो गुर सरदा पूर अमृत मुख पाई जियो हर हो दयाल हर नाम त्याई जियो जन नानक हर रस पाई जियो महला पंजवा राग गौड़ी गुआर री चौपदे को ओंकार सतगुर प्रसाद।

जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ, सत संग ते संग हर तन खटियै, होर थै होर तो पाए हर तन कित न पाई। हर रतन का व्यापारिया, हर तन हर रतन तन विहाजै, कच्चे के व्यापारिया वाक हर तन लिया न जाई।

भगत खाए खर्च रहे निकुटै नाही। हलत पलत हर तन्ने की भगतां को मिली वड्याई। हर तन निरपो सदा सदा अस्थिर है।

हरतन को चक्का नेड़ ना आवई, जम जगाती डांड ना लगाई। साकती पाप कर कैस बिख्या तन संचया, तिनायक विख नाल ना जाई। हलते विच साकत दोहले पए, हथ छुड़क गया अगे। पलत साकत हर दर गाटो ही ना पाई, इस हर तन का साह हर आप है। संत हो जिसनु दे सो हर तन लद चलाई, इस हर तने का तो टक देना आवई। जन नानक को गुरु सो जी पाई, इस हर तने का तो टक देना आवई। जन नानक को गुरु सो जी पाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हसी भी सच। सोचै सोच न होवै जे सोची लख वार, छुपै चुप न होवै जे लाए रहां लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार, सह सियाणपन लख हो है तैं कन चलै नाल। किव सचियारा होइए कब कूड़ै तुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मे होवन आकार हुक्म न कहया जाई, हुक्मे होवन जी हुक्म लै वडियाई। हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लिख, दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बगसी।

सो एक हुक्म है सदा पवाई है, हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय। नानक हुक्म है जे बुझे ताहो मैं कह न कोय, गावे को तान होवे के सैतान, गावे को दा जन निस्वाण, गावे को गुणवड़ियाइया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन के, गावे को जी लै पर दे, गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर हादुर।

है। हुक्म हुक्म चलाए राहो, नानक विकसावे परवाहो, साचा साहु सात नाय पाख्या पाओ अपार, आख मंगह देह देह दात करे दाचार, फेर के अग्गै रखिया जद सह दरबार, मोहो के बोलन बोलिया ज सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच न वड्याई विचार, कर्म आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानके बै जानिया सव्यापे सचियार, थाप्या न जाए कीता ना होए आपे आव निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नान गाविय गुणे निदान, गाविया सुनिया मन रखिया पाओ, दुख पर हसु कर ल जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई, गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई, जय हो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई, तीर्थ नावा जे तिस भावा बिन पाने के नाई, करी जे तिसर ठो पाई वेखा बिन करमा के मिला लई, मत विच रतन जवाहर माणक जेख गुर की सिख सुने, गुरा एक देह बुझाई, सबना दिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई, जे जुग चारे आर जा होर दसुने होए, नमक

स मन्य के गद कहे न जाए देखो कह पिछे बचताए कागद कलम न लिखण हार मन्य का बैकरण विचार ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए मन सुरत होए मन बुद्ध मन स्वगल पवन की शुद्ध मन मोचोटा न खाए मन जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए मन मार्ग ठाक न पाए मन पशु पर गिरदाए मन मग न चल पंथ मन तरु स्थिति संबंध

न पेख। ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोय। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पाव हैं दर गहमान पंचे सो हैं दर राजान।

लग दरियाओ कुदरत कमन कहा विचार वार या ना जावा एक वार जो तुद पावे साई भले कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख रनमुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत।

कार असंख नाम असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुणगा अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखाण जिन लिखे ते सिर नाए जे फरमाए तिव ते पाए जेता किता तिता ना हो विणावे ना ही को थाओ

सत स्वान सदा मंचाओ कवन सवेला भक्त कवन कवन तत कवन वार कवन सुरते मह कवन जतो आकार वेल न पाया पंडित दे हो लेख पुराण भक्त न पायो का दिया दे लिखन ले कुरान ते त्वार न जोगी जाने रुत माव न कोई जा करता सुरटी कोसा जे आप जाने सोई केव करे आखा केव सलाही केवरनी केव जाना नानके आखण।

तिल न तुमाय केते मंगया जो दया पार केत्या गणत नहीं विचार केते खापा तुटे बेकार केते लै लै मुकर पाए केते मूरखा ही खाए केत्या दो पू सदमार ए पै दा चरी दार बंद खलासी पाणा होए हो राख न सके कोई जेको खा के आखण पाए ओ हो जाना जेतिया मोहे खाए आपे जाने आपे दे आखें से पे के दसनों बख्शें सिफत सा।

अमल धर्म अमल देवान अमल तल अमल परवान अमल बक्षिस अमल निशान अमल कर्म अमल फरमान अमल अमल्ला कहना जाए आखा करहे लिवलाए आख्या वेद पाठ पुराण आख्या पढ़ करे बख्याण आख्या बरमय आख्या इंद आख्या गोपिता गोविंद आख्या ईश्वर आख्या सत आख्या केते केते बौद्ध आख्या दानवे आख्या देव आख्या सुर नर मंजन सेवा

प्रभकसिमरन बिन सहदूजा प्रभकसिमरन तीर्थ स्नाने प्रभकसिमरन दरगाह माने प्रभकसिमरन होए सो पला प्रभकसिमरन सुफल फला से सिमराज ने आप सिमराए नानक ता कैला गोपाए प्रभकसिमरन सब ते ऊचा प्रभकसिमरन उदरे मुचा प्रभकसिमरन त्रिसुना बुझाए प्रभकसिमरन सब के सुझाए प्रभु के शरण नाय जम त्रासा प्रभु के शरण पूर्ण आसा प्रभु के शरण मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभु जी बस साध की रसना नानक जन का दास दसना प्रभु को सिमर से तनवंत प्रभु को सिमर से पतवंत प्रभु को सिमर से धन परवान प्रभु को सिमर से पुरग प्रधान प्रभु को सिमर से बमोता दे प्रभु को सिमर से सर्व के राजे प्रभु को सिमरा से सुखवासी प्रभु को सिमरा सदा बनासी सिमरन ते लागे जने आप दयाला नानी जन की मंगेरवाला प्रभु को सिमरा से परोपकारी प्रभु को सिमरा तन सदबल हरि प्रभु को सिमरा से मुख सुहावै प्रभु को सिमरा तन सुख बिहावै प्रभु को सिमरा तन आत्म देता प्रभु को सिमरा तन निर्मल रिता प्रभु को सिमरा तन आनंद कनेरे प्रभु को सिमरा बस अरनेरे सन कृपाते अंदन जाग नानी सिमरन पूरे पाग प्रभु के सुन कार्य पूरे प्रभु के सुन कब न चूरे प्रभु के सुन हर गुणवाने प्रभु के सुन सह सुमाने प्रभु के सुन ने चले आसन प्रभु के सुन कमल बिगासन प्रभु के सुन अन हद चुन कार सुख प्रसन्न कंदना पार सिमर से दिन दिन को प्रम

दीन दर्द को पंजना कड़कड़नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मितना पाई मनोहर नाम तेरा संग सहाई जय मा प्यान दूत जम दला जय केवल नाम संग तेरा चलाए जय मुस्कल होवे अत भारी हर को नाम किनमाए उधारी अनुपुन जन

वस्पति जय प्रसाद क्षति अमृत खाय तिस ठाकर को राख मन माहे जय प्रसाद सुगंध तन लाव तिसको सिमर परम गत पाव जय प्रसाद बसा सुख मंदर तिस जाय सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना हट पैर सिमर तिस रस

रतन साग संग एक ऊपर जतन साज के मेहमा भरने कौन पराने नान साग शोभा ब्रह्मा सुमाने साग संग गोचर मिलाए साग संग सदा पर फुलाये साज का संग आवे बस पंचा सासंग वर्तरा पुंचा सासंग सब के रहना साग संग मनोहर बैन साग संग न कतूता आवे।

स्वागत संगत दय स्व्याप आप जान सा पढ़ाए नान सा प्रभु बन आए स्वागत संग न कबूतावे स्वागत संग सदा सुख पावे सा संग वस्तु गोचर लाए साधु के संग अदरसा है।

एक और कई कोड़ पर दर्व को हिरे कई कोड़ पर दुख न करें कई कोड़ माया शर्माए कई कोड़ पर दे परमाए जित जित लाभ तत तत लगना नान करते के जाने करता रचना कई कोड़ सिद्ध जति जोगी कई कोड़ राजे रस भोगी कई कोड़ पंके दर्प पाए कई कोड़ पाथर बिरकन बजाए कई कोड़ पौन पानी बसंतर कई कोड़ देव भू मंडल कई कोड़ शशियर सूर नखत्र कई कोड़ देव दानव इंद्र सिर छतर सगल समग्री अपने सो

कबों उजने चमै बसै कबों सोग हर कर रंग हसै कबों निंद चिंद व्यवहार कबों बाकाश पायाल कबों बेता ब्रह्म विचार नानका मिला मनहार कबों निरत करै बहुपाल कबों सोय रह दिन रात कबों महा क्रोध विकराल कबों

कुबर जिस जन की आशा जिसके घटिया जम की फसा पापम के जिस मन भूख नन से न लागे दुख जिसको अर्प मंच त्यावे सो संत सोहेला नहीं डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो

करणी कर कृपा जिसको नाम दिया नाने स्वजन निर्मल तिया जा कमन गुर की परते दिजन्यावे हर प्रवचित भगत भगत सुनिया तेलो है जा के हृदय को है साच करने सहता के रास

सुन सरवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुर सत केवल प्रधान करतूत सत साजा के बाने सतपुर समय समाने सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करने निर्मल

शरत सात सात जासो सुनता भोजनार को सात सब होए नान सात सात प्रभु सोए सात सर्वदा जन मान्या करण करामतर मूल पहचान या जा कर दे विश्वास प्रभाया तत् ज्ञान तत् मन भगताया पैते निरपोहे बसाना जिस तेव जात समाय सुमाना बस तुम्हारे लिए बस गटाए तं को बिन न कहना जाए बुझे बुझ नार बाबे एक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवका।

Sevekira Kendrankara Sosevet Dede Apravtare Nani Sosev Sasa Sumare Apne Janaka Paradata Ke Apne Sevekisar Paraka Prendako Devadai Apne Sevekonam Japai Apne Seveki Avadrake Tanki Kalmakona Lake Proka Sevekona Pauche Proka Sevek Uche Uche जो प्रभु अपनी सेवा लाया नाने सो सेवा दादे बताया निके गिरी में कदरा खे बसम करे लश्कर कोट लाखे जिसका साधन काटता होता को राख देख रहा तो मान सुजतन करत वो पात के करत बिरते दाट मारन राखे वरना कोई सर्व जिया का राख सोए काहे सो

अपनी कृपा जैसे आप करे नाने सो से गुर की मत ले बेस विश्व गुर का मन माने सो से परमेश्वर के गत जाने सो सतगुरु जसरे देर ना उन कबार गुर को बल जाऊं श्रम धान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म कैब नहीं कज परम सह सन बलिया न जाय नानक गुरबुड़ भागी पाई है सफल दर्शन पे खतबनीत पर सत चरण गंधर्म रीत पेट संग्राम गुण रावे पार ब्रह्म की दरगाह गावे सुन